0: रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: जाना बिल्कुल जनाब, हिदायत उस्मानी, आजिया उस्मानी, सलमान उस्मानी, अयान उस्मानी, समीउल्लाह उस्मानी, रफी उस्मानी,
1: उस्मानी
0: टोल उस्मानी आंदे वक्त संग प्रोग्राम औरी मनन है कोमा वर्षर कामरान दे औ फरहान दे और सराम इमरान उस्मानी हम दे ना बिल्कुल जनाब कॉल गाड़ी तजू गुरु सोखते कम जन दे सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम तू कुम जन कॉल कर दे मुंग सर ओए प्रोग्राम के अर कले वायु
2: सेहते
0: खैर दे प्रोग्राम तेरे से राउड दी सच्चे मटई बिस्कुट अशाड़ी इंजरान से दे राउड दी डेरा मनना दुनिया का टूल द्रुन इंसान सोखते बाईगानो चेस कहे
1: बिल्कुल
0: वान वाले ना वो सरद बिस्कुट हाँ
1: सरद बिस्कुट
0: सरद हलवा सरद मेचू वही वही नो

0: पूछा कौन है वो खुश नसीब। मैंने पूछा कौन है वो खुश नसीब, वो मेहंदी से लिखा उसका नाम दिखा के रोई।
1: वाह जी वाह।
0: चले ये देर ज्यादा बन सकता है।
1: सोचो फिकर में गमुनो सरा लाड़ो, सोचो फिकर में गमुनो सरा लाड़ो, सुम रख कोले वह वक्तुनो सरा लाड़, जल में मगुर तभी बस में निश्ता निश्ता पिशोगान ओढ़ दे, जल में मगुर तभी बस में निश्ता मैसेज दुनिया भरा शेरा गली दी नो योसोते शामिल हो दासू जी प्रोग्राम कहो है नो दास सॉन्ग वाला गवाए प्लीज वाह वाह लेला। कोशिश में कहू टेम शार्ट दे व्या अबल प्रोग्राम के लगू दादी अबल सड़ी अगे सदे सलामुअलैकुम मामू अता रहमान मामू ते सलाम से डेरा मनन से मानूर हा हा ता वही लतीफे सर में सम खानदल खा उस बाहर जुमरात ला यो लतीफा लाजमी कवे
0: इंशाल्लाह।
1: हाँ जमल खान डेरा मनना निजाम भाई प्रोग्राम डेर खिस्त दे डेरा मनना तासु पखपला डेर खिस्त खलक ये दराना खलक ये कदरदान ये पमंगरान ये जमंग मीनावाल ये जमंग सपोर्टर ये पमंग ग्रान ये अल्लाह उम्दा का शान ग्रान साथा अल्लाह द गाड़ो मालिक खान खा अल्लाह द कुरुन मालिक खान
0: जाजुन मालिक
1: अल्लाह मुद कुर द गनम नड़का हाय हाय सलाम मामू जमाल सिस्टर तो सलाम आई एम अनीजा डेरा मनन अनीजा खुशहाल हो से तो रहमान से वो
0: जी
1: बले लतीफा होगा
0: बले लतीफा
1: जी
0: लतीफी तो उम्र पूरी कहने जय जिम चो सोरे खत्म
1: ची औरस बदासी राशि जब नहीं माँ या औरस बदार दासी राशि जब नहीं माँ जुदाई ब जमा उस्ताशी जब नहीं
0: माँ खेरात लेते ले माँ
1: बिल्कुल दाचे नेक पिता तक गोरम स्ता दीदन कलम दाचे शमान बमी पनाशी जब नहीं माँ और तोरे खावरी बप माँ बंदी अंबार भी तोरे खावरी बप माँ वानी अंबार भी कमी सुख तपूस लराशी जब नहीं माँ पर तुम्हें मानसीरी तो तल्ले तोर घर तो तल्ले बलाकोट कसोक में तपूस लराशी नो जब नहीं माँ तोरे खावरी बप माँ बने अंबार भी
0: जब नहीं माँ
1: जब नहीं माँ जमा मर कता तू की वश तहकारी दा खबर बरख्तियाशी जब नहीं माँ और दा जमा खगवे ना बखल कौरी मान पाती ब दुनिया शी जब नहीं माँ और बहाना माँ ने जम तो कड़े ग्राना चेमे तोर लहत रणा रणा रणा रणा शी जब नहीं माँ
0: जबरदस्त
1: रहमान से गप शप मंगेरो।

0: मेरा आंसर इज ट्रैफिक इंचार्ज बड़ग्राम 18/21 माह तक से है। बड़ग्राम की आवाम काफी सुलझी हुई अच्छी भी है, जो जिस हद तक बात रहे कि उनका तावन सियासी हो या कि गैर सियासी हो, कि जिस तरह का भी है ताजर बरादरी का ट्रांसपोर्ट का मसाइल, तो बड़गाम के डिस्ट्रिक्ट के काफी हैं, आपको भी नजर आ रहे हैं, हमारी आवाम को भी नजर आ रहे हैं। कब से ये जिला बना है, यही के चोड़ है, इस पर गिलगित बल्तिस्तान तमाम डिस्ट्रिक्ट तुरगर का भी शांगला, यहाँ के बड़गाम के भी के गांव देहात अलाई से लेकर तुरगर के नए जो बने हुए मनसेरा आगे पीछे तमाम दफातर तमाम ये इस रोड जो रोड है जिसको कहते हैं इसी पर बाजार भी बना।
1: बिल्कुल,
0: जब बाजार नहीं था तो इससे ट्रांसपोर्ट भी कम थी।
1: बिल्कुल,
0: और उस हिसाब से लेकर आज देखें तो तरक्की के लिहाज से काफी आगे चला गया दीगर डिस्ट्रिक्ट में। रोड देखें अगर तो रोड के मुनासिब से दीगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में देखें बाईपास बने हुए हैं, आवामी सहूलियात के लिए पुल भी इजाफी बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के अंदर हमारा ये कैद के अलावा किसी किस्म का कोई बाईपास न है। इसके बावजूद भी हमने अपनी आवाम को जिस तरीके से कहा है कि भाई यहाँ से नो पार्किंग से यहाँ से गाड़ियां हटाएं कहीं और, क्योंकि नो पार्किंग का भी आपको पता है किसी किस्म का कोई नो पार्किंग में ऐसी जगह जो है सहूलत नहीं दी लोगों को कि पार्किंग दें हम उनको, उसके लिए कोई जगह हो वहां खड़ी करके अपना सौदा सलब लें। तावन हमारी बड़गाम के आवाम का हमारे साथ बहुत जबरदस्त रहा है अभी तक, छोटे से लेकर बड़ों तक मैं इनका मशहूर हूँ, मजीद भी इन्होंने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ, अभी कर भी रहे हैं।
1: इंतजाज खान, अगर हम देखें आपने पार्किंग की बात की, ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक की बात की, तो जिस तरीके से आपने बताया है कि ट्रैफिक में इजाफा हुआ है और रोज बरोज भी इजाफा हो रहा है, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उसी तनासुब से ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी बढ़ रही है और बढ़ने की वजह से मुतासिर भी हो रही है, ट्रैफिक जाम का मसला भी बढ़ रहा है, पैदा हो रहा है, और उसकी मेन वजह जिस तरीके से आपने बताया कि बाईपास का ना होना है, ये दो अलग अलग इशू है जिस पे हम बात करेंगे। पहला इशू जो है वो पार्किंग का है। तो बड़राम शहर में बाजार में, एक छोटा सा शहर है, छोटा सा बाजार है इसका, तो इस बाजार में अगर हम देखें तो जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पे बाहर से भी मेहमान आते हैं, यहाँ के जो तहसील अलई के हैं, बड़राम के हैं, तो यहाँ का भी अपना काफी आबादी है यहाँ पे, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम का मसला रहता है। लेकिन ट्रैफिक जाम में अगर हम जिस चीज को देख रहे हैं वो पार्किंग का इशू है, पार्किंग का मसला है। यहाँ पे लोगों ने अगर देखा जाए तो डीएचक्यू हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है मेन सड़क पे, इसी तरीके से यहाँ पे सामने पुल के इस तरफ अगर आए तो वो शंग्रीला होटल के सामने, यहाँ पे भी गाड़ियां और मोटरसाइकिल है। मतलब ये कि अगर मैदान से हम शुरू करें तो मैदान से लेकर ये नाराजा मोड़ तक यहाँ पे मेन सड़क पे लोगों ने मनी अड़े बनाए हुए हैं, अगर अड़े नहीं भी बनाए हुए हैं तो लोग यहाँ पे साइड पे गाड़ी खड़ी करके वहां से चले जाते हैं, इस वजह से ट्रैफिक जाम का इश्यू और बढ़ जाता है। क्या कहेंगे ये जो मनी अड़े बने हुए हैं या जो वो लोग जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, वो तो ये नहीं समझते हैं कि इनकी एक गाड़ी खड़ी करने से कितने लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्योंकि बीमार भी होते हैं बीच में, बुजुर्ग भी होते हैं, बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में और इस रवैये के बारे में क्या कहेंगे आप?
0: देखें जी, बहुत जबरदस्त आला, आपने जहां तक ये पार्किंग और मनी अड्डों की बात की है, बड़गाम के अंदर जो अवामी मुतालबात के मुताबिक अथॉरिटी ने जो रक्षा स्टैंड दिए हैं या टैक्सी स्टैंड दिए अवाम के मुतालबात और अवाम चॉइस के मुताबिक दिए, ऑल्टो में जो हॉस्पिटल के आगे जो बात की आपने, देखा जाए तो जहां जितनी हॉस्पिटल बनी हुई है मेन रोड पर,
1: बिल्कुल
0: बिल्डिंग तो जरूर उन्होंने बनाई है, सोच समझ कर बनाई होती कि हमारी बिल्डिंग हॉस्पिटल के लिए या स्कूल के लिए, आया इसके अंदर पार्किंग की जगह कहाँ है, ये गलती है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो ये इन चीजों को अगर उन्होंने उस वक्त मेंटेन किया होता, पार्किंग अपने प्लाजे के नीचे हॉस्पिटल के नीचे पार्किंग बनाई होती, मरीज जो आकर खड़े होते हैं वो हमसे यही डिमांड करते हैं कि मेरे साथ पेशेंट है तो मैं आप कहाँ जाऊं, तो सरकारी हॉस्पिटल में भी जगह है लेकिन वहां भी रश ज्यादा हो जाती है, गाड़ियां खड़ी होती होती क्योंकि वहां अंदर पार्किंग की सहूलत मुयसर है, उसमें 10 और 20 रुपए लेते हैं,
1: टैक्स लेते हैं,
0: उसकी वजह यह होती है कि गाड़ी गुम ना हो जाए वापसी पर, वो रसीद वापस लेते हैं, ये एक उनकी तफज की बात होती है। तो दीगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल देखें ना, आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल के साथ बिल मुकाबले 3 स्कूल हाई स्कूल,
1: बिल्कुल
0: इन स्कूल के आगे जो प्राइवेट इन स्कूल के आगे पार्किंग इन स्कूल की बिल्डिंग की नहीं है। कानूनी तौर पर ऐसे स्कूल की बिल्डिंग तो हमेशा बाजार से दूर होनी चाहिए ताकि वहां बच्चे रोड भी क्रॉस करते हैं, पिक एंड ड्रॉप भी होती है, तो ये मसाइल भी हैं। साथ साथ ये देखें कि बिल्डिंग जहां तक बाजार में आप देखें कोई सौदा सलब करता है तो उसका तो हक है, कानूनी हक है, उसको राइट है, वो अपना शॉपिंग तो 5 मिनट के लिए करेगा, हम उसको टाइम देंगे, लेकिन ज्यादातर लोग वो लोग जो गैर जरूरी अपना गाड़ी लाकर खड़ी करते हैं, ट्रैफिक स्टाफ के जवान को कहते हैं कि भाई जान हम सिर्फ 5 मिनट में आते हैं, उनसे मेरी दरखास्त है खुदारा आप हमारे भाई हैं, हम आपके लिए लगे हुए हैं, आपकी सहूलियात के लिए लगे हुए हैं, आपकी वजह से एक शॉपिंग करने वाले आदमी को तकलीफ मिलती है और दीगर अगर डबल कोई खड़ा हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं तो कहता है कि ये जो गाड़ी खड़ी है इसका क्या होगा, आप अपनी जरूरत के अलावा गाड़ी 5 मिनट से ऊपर अगर ये लोग ना खड़ी करें तो किसी किस्म का कोई
1: मसला
0: नहीं होगा। अवाम का तावन इंतहाई ही जरूरी है, जिस जगह पर अवाम का तावन है यकीन करो वहां कानून हर चीज का रेट जो है कायम रहती है। अवाम सबसे बेस्ट है, उसका तावन इंतहाई जरूरी है। बड़गाम के अवाम ने पहले भी किया है, मजीद उनकी कोशिश है, उनको मसाइल नजर आ रहे हैं, जैसा कि 19 से 20 हमारी गलियां जो ऐसी हैं जिनमें मार्केट को एंट्री होती है और आउटिंग होती है,
1: बिल्कुल
0: जैसा आप देखेंगे छपरग्राम अड्डा के साथ नीचे कैंपस है, साथ वैगन अड्डा भी है, मदरसा भी है, छोटा सा रास्ता है, एक गाड़ी अगर जाए नीचे से कोई गाड़ी आती है तो ऊपर हमें गाड़ियां रोकनी पड़ती,
1: बिल्कुल
0: तो वो हमारा कसूर तो ना हुआ ना, ट्रैफिक एहलकार का वो कसूर नहीं है, यहाँ कमी है उस चीज की, ये रोड डबल होना चाहिए, उसके साथ रिलेटेड गांव के साथ मिलाओ अगर तो 20 से 25 गांव बनते हैं, उस गांव का यही रोड है तो उस गांव की तकरीबन 200-250 गाड़ी तो दिन को आती जाती है, इस तरह कैंपस में स्टाफ जाते हैं, बसेस जाती हैं, तो आप देखेंगे भी मसला है। इसलिए इसी के साथ साथ अदालत रोड देखें, अजमेरा रोड देखें, नीचे अड्डा देखें, अड्डे की एंट्री देखें, एक ही तरफ एंट्री है, ठीक है, कोई ऐसी कोई जगह स्पेस है नहीं है जहाँ से हमें मिल जाए ताकि मजीद उसको एंट्री मिल जाए तो क्लियर हो जाए, ताकि जितनी हमें यहाँ से एंट्रियां आउटिंग के लिए डबल रोड मिलेगा, ये ट्रैफिक जो है जिसका भाव 80-90% है ये 15-20% तक भी आ सकता है।
1: बिल्कुल इम्तियाज खान, इस पे आके आपसे बात करते हैं, फिर जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है फिर उसमें आड़े भी हैं, ये चीजें इस चीज को डिस्कस करते हैं। मैं जरा जमील खान साहब की तरफ जा रहा हूँ। जमील साहब, आप चूंकि मैं आपको देखता रहता हूं, बिलखसूस जो स्कूल्स हैं हमारे, जिस तरीके से इम्तियाज खान ने बताया कि स्कूलों के आगे पार्किंग तो है नहीं हमारी, और फिर स्कूलों को अगर हम देखें तो छोटे छोटे बच्चे, अक्सर हमारे बच्चे जो है वो पैदल भी आते हैं, फिर गाड़ियों में भी होते हैं, और फिर गाड़ियों में तो जो बच्चे आते हैं या जिस तरीके से उनको लेके जाया जाता है, डाला जाता है, तो वो भी हमारे सामने है कि किस तरीके से लटक के बच्चे गाड़ियों में जाते हैं, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कैरी डब्बे में या जो दूसरी जो बंद गाड़ियों में उसमें किस तरीके से उनको कड़ा करके ले जाया जाता है। ये जो चीजें हैं ये तो हम देख भी रहे हैं, और यकीनी तौर पर ये बात हम कर रहे हैं कि बड़ग्राम पसमानदा है, यहाँ पे गुर्बत है, लोग अक्सर गरीब है, इसी वजह से ये चीजें भी हमारे सामने आती रही है। इस चीजों से हटकर जरा आप जिस तरीके से ड्यूटी करते हैं, बिलखसूस स्कूल के टाइमिंग में आप काफी एक्टिव नजर आते हैं, जो स्कूल के स्टाफ है या जो स्कूल के मालिकान है या जो गाड़ी वाले हैं, जो प्राइवेट उनकी गाड़ियां हैं जिन्होंने अरेंज की हुई बच्चों के लिए, उनका रवैया आपके साथ कैसा है, और ये जो चीजें आप मैनेज करते हैं तो किस किस्म की दुश्वारी, मुश्किलात और परेशानी आपको आती है, क्योंकि ये तो रूटीन का वो सिस्टम है जो आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से?
2: थैंक यू स्वाति साहब, अल्लाह के फजल करम से कोई किसी किस्म का ऐसा कोई मसला नहीं है हमें, हम बड़ी पुरसकून तरीके से बासानी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। बच्चे तो सबके बच्चे होते हैं, उनसे तो मिस्टेक होती है, वो कभी गाड़ियों के साथ लटक जाते हैं, कभी बाहर खड़े होते हैं, कभी रोड क्रॉस करते हुए इधर उधर नहीं देखते हैं। जहां तक स्वाति साहब आपने ड्यूटी की बात की है, ये हमारा फर्ज है, हमने अपने मुल्क और कौम की खातर जान कुर्बान करने का भी हलफ उठाया हुआ है, तो ये तो रूटीन वर्क की बात है। बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि रोड क्रॉस करवाने के लिए उनको हमारे ट्रैफिक इंचार्ज साहब, हुक्म DPO साहब पटाग्राम, ट्रैफिक अवेयरनेस यूनिट कायम की है, ज्यादातर स्कूल और कॉलेज में जाके हमारे ट्रैफिक इंचार्ज साहब, इम्तियाज साहब ने असेंबली में ٹائم لیا ہے پرنسپل صاحبان سے اور بچوں

0: को छोड़कर टोटल हम 84 जवानों पर मेरे साथ ये टीम मुश्तमिल है और काम कर रही है अपनी आवाम में बटगाम की खिदमत में जोग दर जो तो जारी है, ये खिदमत कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे जबरदस्त एक प्रोग्राम जारी किया और शुरू किया है जनाब नासिर सती साहब डीआईजी अदारा साहब की हिदायत पर, जेर निगरानी जनाब कमर याद से डिप्टी से बटगाम साहब, जो ट्रैफिक एजुकेशन के हवाले से लोगों में ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में जो प्रोग्राम आपको जमील भाई ने नायब ट्रैफिक चार साहब ने कुछ आगाही दी है, हम हर स्कूल को एक महीने में दो प्रोग्राम रखे हुए हैं क्योंकि दीगर एक्टिविटीज हमारी ज्यादा होती है, तो उसमें बच्चों के वालदेन तक हम और बच्चों को भी हम समझाते हैं कि आपने घर से पिक एंड ड्रॉप करते वक्त ड्राइवर साहब को भी समझाया कि आप बच्चे को तरीके से बिठाएं, सीट बाय सीट कोशिश करें, आपको ये किराया दे रहे हैं, ठीक है वो उनकी डिमांडें होती हैं, लेकिन कानून तौर पर ये इजाजत हरगिज नहीं है कि एक गाड़ी है उसमें 10 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें 20 बच्चे बिठाकर लाते हैं, गुर्बत की वजह से लाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ड्राइवर हजरात जो हैं ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाते हैं, उनकी कंप्लेंटें होती हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी करके आपने किसी गाड़ी में म्यूजिक नहीं लगानी, ना ही वालदेन को भिजाए, अपने बच्चों को कहें कि आपका ड्राइवर आपको जब पिक एंड ड्रॉप करते हैं वो आपको क्या सहूलियात दे रहा है, क्या वो तेज रफ्तारी कर रहा है, क्या वो गफलत कर रहा है, आप उसको रोकें। अगर ऐसी कंप्लेंट बच्चों को की वालदेन को मिलती है, वालदेन साहिबान को चाहिए कि वो प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त करें कि ये फलां गाड़ी वाले का ड्राइवर है, ये ऊंची म्यूजिक और तेज रफ्तारी करता है, बराए मेहरबानी आपने ये काम नहीं करना, ये नन्नी मुन्नी जानों के साथ नहीं खेलना, आप ड्राइवर साहब से दोबारा ये दरख्वास्त है। प्रिंसिपल साहिबान ने भी काफी तावन किया है, कर भी रहे हैं, इसी वाले से हमारा प्रोग्राम जारी है, इससे भी काफी बेहतरी आई है हमारे ट्रैफिक एजुकेशन से। साथ साथ हमारे जो ड्राइविंग स्कूल हमारा एक शुरू है नसीम चौधरी साहब, आपको पहले भी शायद पता हो
1: जी जी बिल्कुल
0: आपके लिए मैंने चाहिए, आज मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हमारे वहाँ बच्ची लड़कियों और लड़के दोनों के लिए जिन्हें कोला अलिकान द्वाड़ो ले पा रहा है, जिन्हें कोला लेदा स्टाफ, लड़कियों के लिए लेदा स्टाफ, अलिकानों के ले पा रहा है लेदा स्टाफ मौजूद है, इंस्ट्रक्शन और ड्राइवर ले पा रहा लेडीज कांस्टेबल और लेक्चर ले पा रहा हूँ लेडीज कांस्टेबल मौजूद थी, आहुलम था मुआकेरी की मोटर कार मोटरसाइकिल जीप लाइसेंस ले पा रहा था, एडमिशन की 14 दिन के दिन नमू ट्रेनिंग कराकू अगर बात दर नहीं कराकू दम होगा मानता मैसर दमुसरा और मुंगसरा सेलोरेटर मशीन दे मयारी ड्राइविंग ले पा रहा प्रोग्राम हूँ दाद बड़गाम के शुरू दे स्टार्ट फिर हम
1: इम्तियाज खान मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये एक कॉलर है इसकी तरफ जाते हैं। सलाम वालेकुम, ये लाइन ड्रॉप होगी तो इम्तियाज खान जिस तरीके से आपने ये एजुकेशन की बात की, ट्रैफिक एजुकेशन की और इसके साथ साथ ये जो चीज है इसकी तरफ मैं आ रहा था, लेकिन आपने थोड़ी सी सब मसलों को डिस्कस कर दिया है। तो ये जो मोटरसाइकिलों के खिलाफ आपने दो दिन में बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें जो है वो आपने पकड़ी है, बड़े वो लोग जो बच्चे जो हैं ज्यादातर मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि इसमें वो मुलविस हैं और वो छोटे बच्चे मोटरसाइकिलें चला रहे हैं और उनको आपने मोटरसाइकिलें ली है, तो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या इनके जो पेरेंट है, जाहिर बात है जब आपने मोटरसाइकिलें पकड़ी है तो उसके बाद इनके पेरेंट आए होंगे, वालिदैन आए होंगे, सरपरस्त आए होंगे, तो क्या उनका क्या कहना है और वो जो बच्चे हैं उनका इस मौके पर क्या आपके साथ जो गुफ्तगु है वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से?
0: देखिए जी, बच्चों की जो फरियाद यही होती है जब भी पकड़ लेते हैं तो बच्चे ये फरियाद करते हैं कि हम गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हम दो दो बच्चे मिलजुल कर मोटरसाइकिल को लेकर आते हैं और अपने स्कूल को आते हैं और स्कूल को वापस जाते हैं किराए की और ये जो इजाफी बजट की वजह से हमारे पास कमी है इस वजह से, लेकिन कम सिन को जो है ना ये हर किसी कानूनी तौर पर इजाजत नहीं है कि वो मोटरसाइकिल चलाए, उनकी वजह से आए रोज आप भी सुन रहे होते हैं देख रहे होते हैं कि आप साथ होते हैं, इनकी कम बिल्कुल ना तजर्बाकारी की ड्राइविंग की वजह से आप साथ हो जाते हैं, तो इनके वालदेन से हम एफिडेविट भी लेते हैं, ठीक है अदालत से एफिडेविट पर खर्चा आते हैं, हम बताते खुद अपने दफ्तर में बैठकर वालदेन वालदा जाते हैं, चाचा जिसको होता है, कोई सूबे में होते हैं, कोई कहाँ होते हैं, उनसे लेकर लेते हैं कि बच्चे की जो है ये कम से उम्र में ड्राइविंग की पाबंदी की जाए, लिख कर दो, वो लिख कर हमें देते हैं, हमारे पास बतौर रिकॉर्ड ऑफिस में मौजूद है, اور اس میں کافی تعاون بچوں کے والدین نے کیا.

0: पुलिस वाले आपको चालान नहीं करेंगे या आप किसी और कानून से बच जाएंगे, ये इसके लिए कतान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए है, और हिफाजत के लिए भी इसलिए है, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा होता है तो इस हादसे में सबसे ज्यादा, मोटरसाइकिल के हादसे में सबसे ज्यादा मुतासिर सर जो होता है वो मुतासिर होने का खदशा होता है। इसलिए अगर आप हेलमेट पहनेंगे, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो आपका सर जो है ये महफूज रहेगा, बच रहेगा, और बाकी जो आपकी कोई जगह लगी है तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर सर पे आपने हेलमेट नहीं पहना है, हादसा होता है, आपका सर लग जाता है, तो इसलिए आपके लिए भी मुश्किल है, आपकी फैमिली के लिए भी मुश्किल है। तो इसलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन सिर्फ पुलिस के दिखलावे के लिए या पुलिस को सलामी के लिए नहीं, बल्कि अपनी हिफाजत के लिए इसको अपने पास रखें और इसको जरूर इस्तेमाल करें। इम्तियाज खान साहब, क्योंकि टाइम भी मेरे पास शॉर्ट है, खत्म है, तो जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाता है, हमारे यहाँ यह एक रिवाज बन गया है कि रातों रात हर चीज की कीमत खुद ब खुद आसमान पे पहुंच जाती है, लेकिन यही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब कमी आती है तो फिर वो कीमतें लाने में भी महीने लग जाते हैं। अगर दूसरी चीजों की हम बात करें तो उनकी कीमतें भी उसी जगह भी बरकरार है जिस तरीके से कीमतें बढ़ने के साथ गई थी, और जो किरायों की बात है तो वो भी अभी तक आवाम के तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। यहाँ पे अगर लोकल ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, यो जो टैक्सी बलराम शहर तक जाती है, गुरीबाग तक जाती है या आसपास जाती है, उनके किराए जो है वो जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था उसके साथ जिस तरीके से उन्होंने बढ़ाए थे उसी तरीके से है। बाकी ट्रांसपोर्ट में कुछ कमी बेशी तो हुई है, लेकिन क्या कहेंगे इन किरायों के हवाले से आपकी जो जिम्मेदारी है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप बार बार जो पेंड इस्लाम की तरफ गाड़ियां जाती है, पिशावर की जा रही है, उनको आप रोक भी रहे हैं, लोगों से भी पूछ रहे हैं, तो क्या कहेंगे अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से, ट्रांसपोर्टर जो की जो जिम्मेदारियां हैं उनके हवाले से, और जो आवाम की जिम्मेदारी है उस हवाले से क्या कहेंगे?
1: आपने किराए की बात की, किराया अथॉरिटी मुकर्र करती है, जिनका काम है किराया, आपको पता है आरटीए सेक्टर से जो मुकर्र होता है,
0: बिल्कुल
1: उस किराए के मुताबिक अभी जो किरायनामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर से मुकर्रर हुआ है उस पर हमने बिल्कुल फोकस दिया हुए, अड़जात पर गए हैं, ट्रैफिक स्टाफ को बार बार हिदायत दी है, आवाम को अपने डायरेक्ट पर्सनल नंबर मेन अपना भी दिया हुए है, ट्रैफिक नायब इंचार्ज मिल का भी दिया हुए है, 15 भी हमारा अवेलेबल है, जिसने जो कम्प्लेंट की है, जो मुकर्रर किराया किया हुआ है उस पर बिल्कुल हम फोकस हैं, और मुकर्रर किराए के मुताबिक हम अमल दरामद करवा रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। जिसने किसी ने कम्प्लेंट की है फौरी उसकी कम्प्लेंट का जवाब उसके फौरन दिया गया है, और जो मुकर्रर किराए हम उस पर जारी है, काम जारी है, हम उस पर पीछे नहीं हटते।
0: अच्छा, तो इम्तियाज खान साहब, ये जो आरटीए जो किरायनामा जारी करती है, तो जाहिर बात है वो तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए जो है शहर से दूसरे शहर या जिले के जो बड़े बड़े इलाके हैं वहां तक जाती है उनके लिए। ये जो लोकल गाड़ियां हैं, ये जो टैक्सी वगैरह है, तो इनके किराए कहां से जारी होते हैं? ये जो किराया मुकर्रर करते हैं या जो किराया लेते हैं, इनके लिए क्या तरीकाकार है, क्या कानून है?
1: असल में ये बड़गाम से हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान से मुकर्रर होता है किराया, उन्होंने मुकर्रर करके किरायनामा जो शेयर किया हुआ है हर अड्डे पर, रिक्शा स्टैंड और टैक्सी जो कैरी डब्बे चलते हैं उनके लिए, तमाम के लिए हमने सबको पैगाम पहुंचाया और किराए नामे भी उनके दिए हुए हैं, और आवाम को भी शेयर किया हुआ है कि ये किराया शमलाई रूट का है, ये फलां रूट का, जितने भी हैं गुजरबान डाक कैरी डब्बे थे, लोकल किराएनामा जो मुकर्रर किया हुआ है वो शेयर किया हुआ है, उसके मुताबिक किराया गाड़ियों वाले ले रहे हैं, जो खिलाफ वर्जी करता है उसकी कम्प्लेंट जो करते हैं उसके मुताबिक हम उसको उसके किराए को वापस दिलाते हैं, जो कार्रवाई उसके दिल में होगी हमको जो चाहते हैं जिस तरह चाहते हैं उस तरह हम उसकी दादरसी करते हैं।
0: इम्तियाज खान साहब, चलते चलते ये आखिरी सवाल है लोगों की तरफ से, ये सवाल बार बार दोहराया जा रहा है कि बलराम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान में इजाफा देखने में आए, क्या कहेंगे? ये जो जो आपका चालान है, इसका जो तरीकेकार है, ये किस तरीके से आप कर रहे हैं, और ये जो लोगों की जो राय है या जो लोग कह रहे हैं शिकायत है?
1: देखें जी, ये जो गाड़ियों वाले जितने भी आपको पता है इन गाड़ियों वाले के पास किसी किस का लाइसेंस देखें तो लाइसेंस भी नहीं होता आता है, सिर्फ तारीफ करते हैं। गाड़ी के जीप गाड़ी है जी, उसमें 6 सवारियां पास है, तो उसमें 20 लाए तो उसको हम जुर्माना करेंगे। जब उसको अवेयर कर रहे हैं कि भाई इस तरह न मत लाओ, इतनी ज्यादा सवारियां मत लाओ, ये खतरनाक अमल है, इससे एक्सीडेंट होगा, इतने लोगों की जान जाया हो सकती है, तो उसके बाद में हम तो खिलाफ वर्जी कोर्ट में चलान जो मुकर्रर गवर्नमेंट के किए हुए हो तो हम करेंगे। एक आदमी कानून की पासदारी नहीं करता, تو سزا تو اس کو ملے گی نا.
0: بالکل.
1: تو

0: जो जितने भी बड़गाम के अंदर ट्रांसपोर्ट अभी बेहद ज्यादा है, तमाम खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जी के अलावा किसी किस्म का कोई नाजायज चालान ना ही कर सकते हैं, ना ही किसी किस्म का कोई करप्शन कर सकते हैं, ना ही हमारा डीपीओ साहब मान रहा है, ना ही हमारा आरपीओ अदारा डीआईजी साहब मान रहे हैं, सख्ती से अमल किया हुआ है। उन्होंने कहा जो रेट चैलेंज कर रहे हैं, आपको पता है एक आदमी लाइसेंस ही नहीं बना रहा, एक आदमी कागजात ही नहीं बना रहा, एक आदमी एपीएल लेकर फिर रहा है, एक आदमी हेलमेट नहीं पहन रहा, तो उनको बार बार अवेयर करने के बावजूद आखिरकार मरीज जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो ठीका जरूर लगाता है। तो ठीक करने के लिए इनके लिए जुर्माने ये हैं, ये जारी रहेंगे। अगर इन अजियत से बचेंगे, इन अजियत से बचना चाहते हैं तो अपना हेलमेट, अपने कागजात, अपने लाइसेंस, अपने आप को कानून के मुताबिक रखकर बड़गाम में चलें, टेंटेड क्लासेस ना करें, नो पार्किंग भी ना करें, गलत जगह पार्क ना करें, गलत सवारी ना बताएं, गलत काम ना करें तो उसकी सजा नहीं होगी। आप ठीक रहेंगे तो ट्रैफिक स्टाफ वालों की तरफ से मैं ये बैठक आपको सलूट कर रहा हूं कि मैं 24 घंटे आपके लिए ताबेदार नौकर।
1: जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा जाहिर बात है कि उसको टीका जो है वो लगेगा। तो चूंकि टाइम मेरा खत्म हुआ है तो जमील खान साहब जाते जाते क्या पैगाम लेना चाहेंगे मुख्तसर अल्फाज में, क्योंकि टाइम मेरा जो है वो बिल्कुल चार्ज है।
2: थैंक यू स्वाति साहब, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, मेरी बड़ग्राम की प्यारी आवाम को, मेरी बड़ग्राम की प्यारी कौम को अल्लाह ताला कायम दायम रखे। अमन के बहुत मशकूर हैं, वो हमारे साथ बहुत तवन करते हैं। मैं यही पैगाम दूंगा अपनी बड़ग्राम की कौम को कि कानून की पासदारी करनी है, अच्छा शहरी होने का सबूत देना है, अपना ख्याल रखना है, केपीके पुलिस के लिए दुआ गुआ रहना है, केपीके पुलिस आपकी खिदमत में हर वक्त पेश है।
1: इम्तियाज खान, जाते जाते आप पिश्तों में क्या पैगाम देना चाहेंगे?
0: मेरा मनन है बड़ग्राम आवाम तदा पैगाम रसोमा मशहूर है, तावन शुक्र गुजार है, तावन भी इन शाह तला निजाम बम दुरुस्त हुई, न बा चालान थी गई और न बा परेशानियां नहीं जुड़ेगी, सास मीना अगर अजम तलब है।
1: एक मरतबा फिर मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला, मेरे पास यहां पे आए, इस प्रोग्राम में शरीक हुए और पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से जितने भी सवालात थे, शकूक शुबात थे और हम समझ रहे थे कि जिससे आवाम को फायदा हो सकता है उन्हीं मसाइल को हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया है। तो जाते जाते आप दोनों का एक मरतबा फिर दिली शुक्रिया। और इधन को कतन को जुमादा प्रोग्राम टेम दगजे के खत्म दे पतलुतो के दगा मैसेज दोबारा रिपीट को मा चिपाखपल चापेर चल के चमगावन चनकुसा कूर किली और पालाका के ख्याल का वाय डेर द महंगाई वक्त है, डेर खलक दासे दे चिया बेवस दे बेकस दे मजबूर दे लाचारा दे दगा खल को सरा मरस्त होकर तावन होकर उर दे गई जका चिजमंगा दगा ध्वज निमी रजी ज्वन चिकम दे दा द खेर खेगड़ी द पारा दे दा मरस्ती द पारा दे दा तावन द पारा दे दगा बा मंगला पकार रजी और सरा सरा पचा बंदी हम एतिमाद एतबार भरोसा मका वही जका चिदा से वक रागल खल्क सिर की तूरी दोकरा की नो चा सरा जिस खबर का वही अगे नमक की अकबल مشران سرا مشورہ کوي اغه درستو بیا هغه کار کوي په هغه کار کې با دوکه هم نوي او په هغه کار کې با برکت وي د سره سره داسې وخت چې خلق په نشو تماشو کې ګیر دی ډیر خلق داسې دی چې هغه په آیس کې په منشیاتو کې خپل دی هغه کوشش داده چې زمونږه دغه د ګلونو په شانتي ځوانان ماشومانان دا هم په دغه نشو تماشو کې ګیر شي دغه زمونږ ځوان دغه د ګل په شانتي ماشوم کې په نشو تماشو کې ګیر شو د ما د پاره زمو مستقبل لپاره او دغه معاشري لپاره دا با ناصر وین خپل په ماشوم باندې نظر وساتای ک جون وین وراتون کی جمعرات پر ازی بیا یو بل مل مسرا په دغه پروگرام عوامي عدالت کې ستاسو مخ کې با حاضری غم تر هغه پوری د خپل دواړو ملمنو امتیاز خان او د جمیل خان سره تاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا د قبر عذاب او راحتنا د قران او د

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कान। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: अमन दरुह संदरदा।

0: आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का
2: जज्बा। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आप।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर।
6: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: Allein Chan, not alone somebody, Mr.
1: मैं खुद नहीं करता अपनी तारीफ, वक्त लिख के गा मेरा तारुफ अपना मुझे मायूब लगता है.
0: मिस्टर
1: परेशान
0: खुदाई दे पखपल सजा दर करी रब दे जमान पर
1: सजा. शेर राया चो, शेर राया चो, नहीं चो, शेर राया चो. शेर दास होगा ना के हकीकत छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से. कागज तो गुलू चले खुशबू को जोड़ा तब आगे शांति निकी और बोल बापा क्या शांति इंशाल्लाह जमीन.